जीसस करना किरा निनारा मनने मोहिनी लयकरा मिस्कितो नने मेबे मन दोनोस मा लमला क्लहन का तारा कुम नायुआ देका माई ब्रीसा मन लमला लुपिया विल की बामन स्मा सिप फिंके कमरा विहवर कम लुपिया तकरस सिप मन जरा कुम सिंदाओ करस पोरके लमला उबा क्लहुसा ओ मेबे विनम तारा ननेबा सुत क्लहु